0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रूपये क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मुंगारु हंगामिना बेले वीमे गागी ईगा नोंदणी माडिकोळ्ळिरी।
2: बैंक सामान्य सेवा केंद्र ग्राम वन केंद्र हेच्चिन माहितिगागी www.samrakshane.karnataka.gov.in वेबसाइट के भेटी नीडी।

0: आने हो गए आने आज पीछे हो गए आने
1: क्या
0: चार चार चार ओ राजा चार चार चार ओ राजा चार चार चार आज पीछे हो गया हमको आज पीछे हो गया हमको
1: क्या
0: प्यार प्यार प्यार ओ राजा प्यार प्यार प्यार ओ राजा प्यार प्यार प्यार
1: हलुआ बाबू जी हलुआ।

0: माता जी से ये कह दूंगा मैंने सुन ली रानी, माता जी से ये कह दूंगा मैंने सुन ली रानी। आज हमारे घर में दे दो, आज हमारे घर में दे दो
1: क्या
0: तार तार तार ओ राजा, तार तार तार ओ राजा, तार तार तार। आज कितने हो गए आंखों, आज कितने हो गए आंखें, चार चार चार ओ राजा, चार चार चार ओ राजा, चार चार चार।

0: खेले पहली ही बाजी न गए हम, पहली ही बाजी न गए हम।
1: क्या
0: हार हार हार ओ राजा, हार हार हार ओ राजा, हार हार हार। आज किसी पे हो गए आगे, आज किसी पे हो गए आगे। चार चार चार ओ राजा, चार चार चार ओ राजा, चार चार चार।
2: आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हिच हिच हिच की आए रे तबीयत बिचकी बिचकी जाए।

साजन जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए रे तबीयत बिचकी जाए। डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ठडा, डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ठडा, डेड़ा ता डेड़ा डेड़ा डेड़ा डेड़ा।

अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे। रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। जब देखूं अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे। रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। कोई शराबी मद का प्याला जैसे पी के आए। हित हित हित की आए रे तबीयत बिचकी बिचकी जाए। दिलाता दी

अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए रे तबीयत बिचकी बिचकी जाए, बेड़ा का डेरा

जो हमारे पंछी बनके हो गए 9, 2, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। होश हमारे पंछी बनके हो गए 9, 2, 11 इस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। रूप की गर्मी शोला बनकर दिल में आग लगाए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला

साजन जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए रे तबीयत बितकी जाए। डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ठडा, डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ठडा, डेड़ा ता डेड़ा डेड़ा डेड़ा डेड़ा डेड़ा।

रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। जब देखूं अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे। रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। कोई शराबी

होश हमारे पंछी बन के हो गए 9, 2, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 किस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। होश हमारे पंछी बन के हो गए 9, 2, 11 किस मुश्किल में जान फंसी है अपने बज गए 12। रूप की गर्मी शोला बनकर दिल में आग लगाए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। अरे आज न जाने पागल मनवा काहे को घबराए, हित हित हित की आए तबीयत हित की जाए। दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला दिला

आज न जाने पागल मनुआ काहे को घबराए, हित हित हित की आए रे तबियत बिचकी जाए। डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा ता डेड़ा।

रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। जब देखूं अलबेला आंचल दिल पे बिजली टूटे। रूप नशीला एक झलक में दिल की दुनिया लूटे। कोई शराबी मद का प्याला जैसे पी के आए। हित हित हित की आए तबीयत बिचकी बिचकी जाए। दिला ता दिला।